तेरा अंत ना पारावरिया। राग आसा महला चौथा। सो पुरख क्या ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख नजनार पुनण गमा गम पारा। सब त्याम है सब त्याम है तो जी हर सच है सिजन हारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दतारा। हर दया वो संतो जी सब दूव सार नहारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घड़ घड़ अंतर सर्ब निरंतर जी हरे को पुरख समाणा। एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज वडाणा। तू आपे दाता आपे पूता जी हों तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आव खाना। जो सेवै तो जी जा नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावै तो जी से जन जुग में सोवासी। से मूत पहे जिन हर त्याया जी तिन तुटी जम की फासी। जिन निर्भाओ जिन हर निर्भाओ त्याया जी तिनका पाओ सब गुवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी त्यारा रूस मासी। से तन जिन हर त्याया जी जा नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत पसलां तो जी अनक अनेक अनंता। तेरे अनेक ते करियार पूजा जी तब तापे जब बेअंता। तेरे अनेक पड़े बहुत सिमर सा जी कर क्रिया खड़ कर्म करंता। से भगत पल जा नानक जी जो पावे मेरे यार भगवंता। तू आदि पुरु परंपर करता जी तो जे वडवर न कोई। तू जो जो एको सदा तू एको जी तू निचल करता सोई। तुदे आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सोई। तुदे आपे से सब पाही जी तुदे आपे से सब गोई। जा नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानू या सा महला चौथा। तू करता सचार में डासाई जो तू पावे सोई थी सी। जो तू दे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिहनो कृपा करे तेना अमृतन पाया। गुरमहला दा मन मोगवाया तोदिया विछोड़िया मलाया। तू दरियाओ सब तुझी माए तुझ बिन दूजा कोई नाए। जे जंद सब तेरा खेल वजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाने सोई जन जाने हर गुंसा दी आव खाने। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजावर न कोए। तू कर कर वेखे जाने सोए जा नानु गुरम परटोया समला पहला। तेत सरले बैले नवासा पानी भाव तिने किया। पंग जमो पग नहीं चाले हम देखा तै डूबी अले। मन एक न चेस मूड मंदा हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जसती नी पढ़िया मूरख मुहदा जन्म भया। प्रणव नानक तिन की सरणा जिन तू ना ही विसरिया। आसा महला पंजवा पई प्राप्त मानुक दे हुरिया।
गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर का इधर किते ना काम, मेरे सासन पाए के वंदा, सरंजाम ला पव जल तरन कह जन बिरथा जात रंग माया के रहाओ, जाप ताप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साधन जानिया हर राया, कहो नानक मनीज करमा, शरण परे की राखो शर्मा, पातशाही दसवीं कव्यो वाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, ताव चरण मन राय हमारा, अपना जान करो प्रत पारा, हमरे दोसवे तुम काबो, आपा दे मोहे बचावो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक से सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब ऐरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बार जाऊं तुम ते पाऊं, सेवक से खा मारे तारी है, चुन चुन सत्रह मारे मारी है, आप हाथ दे मुझे अवरी है, मरन काल का त्रास नवरी है, हो जो सदा हमारे पछा, श्री तुझो करी हो रक्षा, राह ले मोयरा कड़हारे, साहिब संत साहे प्यारे, दीन बंधु संके हमता, तुम हो प्री चतुरदास कमता, काल पाए ब्रह्मा बवतरा, काल पाए शिव जू अवतरा, काल पाए करमे प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सेव कियो, बेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देवदाय जशन उपजायो, आदि अंत कह अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिसी को हमारी, सल पर जाजने आप सवारी, सेवकन को सेवगन सो दियो, सतरन को पल मुँह बद कियो, कड़ कड़ के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पिशानत, चीटी ते कुंचरे अस्तूला, सब पर कृपा दृश कर फूला, संतन दो पाए ते दुखी, सोह पाए साधन के सुखी, एक एक ही पीर पिशान, कड़ कड़ के पढ़ पढ़ की जान, जावुद कर करां कर तारा, पर जा तरताव दे अपारा, जाबा कर कर तो कब हूं, तुम मैं मिलत दे तर सब हूं, जेते बन से सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरा तनरालम, जान बेपे तेरे आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद नील अनाद संभ, ताका मूड़े चात भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताको गर्भान मानत, महा मूड़ का पे न जात, महादेव को कह सदाश, निरंकार का चीनत न पेव, आवे अपनी बुद्ध है जेती, बनत पेन पेन तोहे तेती, तुमरा लखन जाए पसारा, के बेसरा प्रथम संसारा, एक रूपानूप सरूपा, रंक प्योरा कहीं पूपा, अंड जर से तज कीनी, उतबोई खान बहोर रच दीनी, कहूं बूरा जाहूं बैठा, कहूं सिंप्यो शंकर कैठा, सगरी से दिखाए चंभव, आज घास रू से अंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख अबार सिख संगरो, दूजे ते उठो तो पाता, सगल मलेश करो रणगाता,
ਜਿਆ ਤੋ ਸਭ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋ ਤੈ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਾਉਨ ਪਾ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ਜੋ ਕਾਲ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ ਪਰ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਏ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰੀ ਟਰੇ ਤਦ ਕਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਤਨ ਜਾਏ ਨ ਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਰੰਗ ਮੈਂ ਹਰ ਹੋ ਰਿਦ ਸਿਧ ਕਰਮ ਸਭ ਹੋਈ ਦੋਸੈ ਸਹਿ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੇ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਬਾਂ ਤੇ ਤਾਏ ਉਬਾਰਾ ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਆਰੋ ਕਹਾ ਦਰ ਦੋ ਦੋ ਤੇਰਾ ਖੜਗ ਕੇ ਤਮੈ ਸਰਣ ਤਿਆਰੀ ਆਪ ਹਾ ਦੇ ਲਿਓ ਅਬਾਰੀ ਸਰਵ ਡੋਰ ਮੋਹੋ ਸਹਾਈ ਦੋਸ਼ ਦੋ ਤੇ ਲਿਓ ਬਚਾਈ ਸਵਈਆ ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮ ਰਹੇ ਤਬ ਤੇ ਕਉ ਆ ਤਰੇ ਨੀ ਆਨੇ ਓ ਰਾਮ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਹੇ ਮਤ ਇਕ ਨ ਮਾਨੇ ਓ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੇ ਸਬੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੰਨਾ ਜਾਣੇ ਓ ਸ੍ਰੀ ਹਸਬਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹੋ ਸਭ ਤੋਏ ਬਖਾਨੇ ਓ ਦੋਹਰਾ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਿਹੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ ਬਾਹੇ ਗਏ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦਾਸ ਤੁਹਾਰ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕਿਉ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਹਰ ਨਾ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰਾ ਸਵਾਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜੇ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਿਫਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਜ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਹੈ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜੇ ਦਿਆ ਵੜਿਆਈਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆ ਪੈਂਦੋ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਡਕ ਮਾਰਿਆ ਤੁਰ ਕਰਮ ਬਾਇਆ ਤੋ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖੋਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ ਦੂਬਰੋ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪੈ ਸੁਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿ ਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰਿਆਂ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਮਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਾਸਨ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕ ਖਾ ਪਿਓ
जिसका सब सरदारो, जे को खावै जे को पूछै तिसका हो अदारो, ये वास्तई न जाई नेतन ठाकुर तारो। तम संसार चन लग तरियै सब नान ब्रह्म पसारो, श्लोक महला पंजवा तेरा कीता जात हो नाई, मैनो जो कितो होई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पे होई तरस पिया मेहरमत होई, सत गोरे सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया तरस पिया मेहरमत होई, सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवे हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परमस्कार जो सत्संग जी सतगुरु की रहमत दा सदका शामा दे दीवान दियां हाजरियां भरियां ने, शब्द चौंकी च कीर्तन सोध रै सब दे पाठ होए ने, गुरु कृपा करे आप जी ने सरवण कीते, सतगुरु आप सब नूं चढ़दियां कला बख्शन। अज भाई हरनेक सिंह भी विराजवंत कौर संघेड़ा परिवार जिन्हां दे बच्ची दे आनंद कारज ने, बच्ची सिमरजीत कौर जिसे आनंद कारज ने, परिवार वालों बच्ची दे जीवन दियां खुशियां चढ़दी कला ते आनंद कारज दी आरंभता दे सफलता दी याचना करदे होया अज दे समुचे समागम ने। परिवार वालों सुखमणी साहब दे पाठ आरंभ हो रहे ने, पौने सत्त बजे तक सुखमणी साहब दा पाठ होएगा, उस तो बाद अरदास होएगी। सो परिवार नूं बेनती है कि आप जी ने अरदास विच जरूर शामिल होना। उपरंत 8:30 बजे तक दीवान साहिब दे ने परिवार वालों ही कीर्तन अते गुरु के लंगरां दी सेवा भी है। सब ने श्रद्धा नाल छकण दी कृपालता करनी जी। बहुत बहुत परिवार नूं बच्ची दे आनंद कारज दीआं वधाईआं। गुरु कृपा करे सारे कार्य सतगुरांग संग संपूर्ण करन अते बच्ची नूं खुशियां भरिया जीवन बख्श के चढ़दी कला दा जीवन बख्श परिवार विच सुख वरतौण। आओ सरवण करिए भाई साहब भाई मंगल सिंह पासों सुखमणी साहब दे पाठ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

नानक इन कै कछु नहा सलोक। अगम अघात पावन सोए जो जो कह समुक्ता होय सुन बीता। नानक पिनवंता साजना के अचल कथा पदे। साध के संग मुख होत साध के संग मुख उजल होत। साध समर सरी खो साध के संग मिटे अपमान। साध के संग प्रगटे सो ज्ञान। साध के संग बुझे प्रभ नीरा। साध संग सब होतन बेरा। साध के संग पाए नाम रतन। साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी नान। साध की शोभा प्रभ मह समानी। साध के संग अगोचर मिलाय। साध के संग सदा प्रफुल्लाय। साध के संग आवे बस पंचा। साध संग अमृत रस पंचा। साध संग हुए सब की रेन। साध के संग मनोहर पैन। साध के संग न कतू तावे। साध संग अस्तित मन पाए। साध के संग माया ते भिन्न। साध संग नान प्रभ सु प्रसन्न। साध संग दुश्मन समीत साधु के समापनीत। साध संग के सुनी पैर। साध के संग न बींगा पैर।

साध के संग सदा सुपाय। साध संग बाते गोत्र लहै साधु के संग, अजर साय साध के संग बसे तन ऊचे साधु के संग मैर पहुँचै। साध के संग बसे साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग कृपा ब्रह्म।

सार संग धर्म लाय कर सेवा सार के संग सुबर सुदेवा साधु के संग पाप लायन सार संग अमृत गुण कर साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जनम सार के संग नई कर कार दर्शन पीरत होत निहार सार के संग कलु खत हरै साध के संग नरक पर हरै सार के संग इहा उस इहा उहा सेला साध संग बिछड़त हर मेला जो छे सोई फल पाए सार के संग न बिरता जावे पार ब्रह्म साध न बसै नान कुदरे साध सुन सह साध के संग सुनो हर नाम साध संग हर के गुण गा सार के संग नमते बिसरै सार संग सर्प निस्तरै सार के संग लगे पर मीठा साधु के संग कड़क डीठा साध संग पे आज्ञाकारी

आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहजन वास नान ब्रह्म ज्ञानी का नहीं पना ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कह हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निमन मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रयाप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्स बड़ भागी पाए ब्रह्म ज्ञानी को बर बर जाये ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर नार ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना हे ब्रह्म ज्ञानी के सर मनवाए ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देस है।

ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सर्व प्रहात, ब्रह्म ज्ञानी का सगल एकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी पनी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक, उतारे जो अंतर ना सर्व में पेखे भगवान, निवख निम ठाकर नमस्कारे, नानक ओ अपर सन तारे अटपदे, मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत, निरंजन दर्स पर त्रै रूप न पेख नेतर, साध की टहर संसंग हेत, करना सुने काव की निंदा, सब ते जाने आवसको मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरे, मन की बासना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दो ते रहत, नानकूट मदे कुवैसा परस, बैसनो सो जिसे उपर सो प्रसन्न, बिसन की माते होए पैन, कर्म करत होवे न कर्म, तिस बैसनो का निमृत धर्म, काहू फल की छानी बाछै।

आप करे आपन विचारे दूसरा कया स्वामी खेले बक्से अंतर जामी जो भावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवन आवे कहो मानुख ते क्या होया फे जो ते पाए सोई करावे इसके हाथ होए ता सब किस रे जो तिस भावे सोई करे अनजानत बिख्या में रचै जे जानते अपने आप बचै परमे फूला दह जस धावे ने खुमाए चार कुंड फिरे आवे कर कृपा जिसे अपनी भगते नानक ते जन ना मिले खिन मैं नीच कीट कुरार पा ब्रह्म गरी पनवा जाका दृष्ट कछु नया पे तस तत्कार दह दिस पटावे।

तन संतन की बाछो तुर नानक की हर लोचा पुर मन मूर्ख काहे बरलाए पुरब लिखे का लिखा पाए दू सुपरा देवनहार अवत्या तू तसहज तार जो काश करे सोई सुखमार भूला काए फिरे जान कौन बसते आई तेरे संग लापट रहो रस लोभी पतंग राम नाम जप फिर दे माय नान पसती कर जाए जिस वखर को लै तुआ राम नाम संतन कृपा तज अभिमान लिहो मन भूल राम नाम हृदय मैं तो लाद खेप संते संचार अवरत्या बिख्या जंजाल धन तन कह सब कोय मखू जलह दर के सोए एहो बपार बिरला बपारे नानक ताके सब पराज चरण सार के धुत पियो अर सार को अपना जियो सार के धूर करो स्नान साधु पर जाइए कुर्बान साध सियाल भागी पाए साध संगर कीर्तन गाए अन्न पिगते साधु राखे हार गुण गाए अमृत रस चाखे

सुनी सची बाणी संत साजन पै स्वर से पूरे गुर ते जानी सुनते पनहित कहते पवित सतगुर आपर पूरे बेनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पनहित कहते पवित सतगुर आपर पूरे बेनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा।

बोलो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी एक ओंकार, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगत जी सहाय वार, श्री भगत जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय, अर्जन हर गोबिंदो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है, जे डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दे आवे ताए। सब ताई होई सहाय दसवें पातशाह, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। ओ सब ताई होई सहाय दसों पातशाहियों की जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पवित्र पाठ दीदार दा ध्यान तर खालस। सब बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारिया चौं सब जाते हैं, चालिया मुक्तियां अठियां जपियां तपियां, शाही सिंघां सिंघणियां जिन नाम जपया, वंड छकिया देख चलाई, तेग वाई देख के अंडर कीता, तिना गुरमों प्यारे सचारे की कमाई का ध्यान तर खालस। सब बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्मे सी दिते, बांध बांध कटाए, चरखड़ियां ते चढ़े, आरिया नाल तन चरवाए, उबलदियां देगा विचो बाले के खोपरिया लुहाइया, गुरुद्वारियां दी सेवा संभाली, कुरबानियां कीतियां, तेरे भाणे नूं मिठा करके मन्या, असह ते कह असहार दे शहीदो सिकित केसा सवासा संग नभाई, तरमनी हारिया तिना समूह शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान तर खालसे। सब बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तखता सुरबत गुरुद्वार जी का ध्यान तर खालसे। सब बोलो जी वाहिगुरु। प्रथम खालसे जी की अरदास है जी, सरबत खालसे जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेतावे चेतावन का सदका सर्ब सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रहा, दे ते फतेह बिरद की पैज, पंथ के जी श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले खालसे। सब बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रह दान, विवेक दान, वसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान, श्री अमृतसर साहब जी के इनान, चौंकियां झंडे बुंगे, जुगो जुगा टल, धर्म का जयकार, खालसे जी के बोल बाले खालसे। सब बोलो जी वाहिगुरु। सिखा दा मन नीवा मात उची मादे राखे, आप अकाल पुरख अंतर जामी, गुरु गरीब निवास जी पातशाह पंथ दे सदा सहाय दार पिता जी। श्री ननकाणा साहिब और गुरुद्वारे जिन्हां तों पंथ नूं छोड़िया गया, सेवा संभाल अपने खालसा जी नूं बख्शो जी। निमाणिया दे माण, नदाणिया दे ताण, मेउटियां दी उड़ने आसर दे आसरा, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी आप दी पार बख्श रहमत कृपा दा सदका, सरबत दे भले लई, पंथ दी चढ़दी कला, समूह संगतां दी सुख शांति वास्ते, अते भाई हरनेक सिंह बीबी राजवंत संघेड़ा परिवार की चढ़ती कला लिए आप दे हजूर, शामा दे दीवान सजे सजे दिवाना विशव पचौंके कीर्तन सोध रहा साहब के पाठ होए ने उपरंत दाता जी। आप ने कृपा की दरों करों वरसाए, भाई हरनेक सिंह बीबी राजवंत संघेड़ा परिवार लों बख्शियां दातां दा शुकराना करते हुए, परिवार की सुख शांति तंदुरुस्ती चढ़ती कला, अते दाता जी कीता लोड़ी कम सो हर पै आखी है, कार दियो सवार सतगुर सच साखी दे मां दाता जी। बच्ची सुनिमर कौर जीत कौर दे आनंद कार्य की सफलता की जाचना करदे होया, अते कार सारे कार्यां की आरंभे कार्यां की संपूर्णता की जाचना करदे होया शुकराने वजो, अते बच्ची दे आने वाले जीवन दियां खुशियां की जाचना करदा परिवार ने आप दे चरण प्रसन्न कीते, संगतां दे चरण प्रसन्न कीते ने। सुखमणी साहब दे पाठ की सेवा आरंभ हुई संपूर्ण होए, उपरंत दाता जी नंद साहब की छे पौड़ियां दे जाप होए ने, अखर का वाधा घाटा पुलचो देखे मावनी, पढ़ी सुनी बाणी का भाव समूह परिवार से बच्ची के हिरदियां विच वसाउणा, मेहर करनी दाता जी परिवार के सिर ते मेहर भरिया थकना, परिवार विच सुख वरताउणा, बच्चियां सिर ते मेहर भरिया थकना, तंदुरुस्तियां चढ़दियां कला बख्शिश करनिया, अते बच्ची के आरंभे हुए आनंद कार्ज अपने अंग संग सहायक संपूर्ण करने, बच्ची नूं प्रेम प्यार सुहाग वाला जीवन आने वाले समय चढ़दी ते दाता जी हर प्रकार के सुख प्रदान करने, अते बख्शे जीवन नूं दाता जी ओ खुशियां सहत मारन दा आनंद बख्शिश करना, आने वाले समय चढ़दी कला बनी मेहर भरिया हथ रखना शुकराने वजों, परिवार नूं आप जी सुंदर माले बेअंत माया
ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਲੰਗਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੇ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਵਸਾਏ ਜਨੇਤਪੁਰਾ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ। ਸੰਘੇੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਗ ਆਦਰਾ ਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੇ ਸੰਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਔਰ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪਰਿਆਤ ਕੜਾ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ।

त्याग करके भक्त हरि मोह है साधु मनता है। सखी वसे आया सखी वसे आकर सुन जाए प्रीत बली भगवंता है ना जरा मन प्रमा प्री के दर्जन तय सुन सखी है बड़े बंदी है मुताल बगाई है सह सफाया पाग रात गीत गोविंद गाई है इंकल कले मुंडा मंट सहाय मन च दया फल पाई है पार बार पूर्ण परमेश्वर नानक नाम त्याई है। सखी चगरी ने सुख मराय प्र मेरी अस बजाए चरण पिया सी दस बरागन पे को सा सवाए हो जो हर संग नाल सुन सबर कमलाए ना त्रम सजन दाता से उठ बाजू माए सखी नाल सब ने ना प्यारे मेरा मन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरनी दबली मैं अपनड़ा पिर मिलिया परम खोयो सा सह सवाई मेरे गैस प्यो कल खिलिया वर पै परमंत्र जामी नानक सुहाग ना टलिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी बावन करी महला पंजवां सलोका गुरदेव माता गुरदेव पिता गुरदेव स्वामी परमेश्वरा गुरदेव सगा ज्ञान भंजन गुरदेव बनसोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेव साहब गुरदेव मंदिर उत्तरा गुरदेव सांस मजबूत गुरदेव पारस परपुरा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मजलै परंपरा गुरदेव गुरदा परदा गुरदेव परत परतरा गुरदेव अज अजो अजो गुरदेव मंत्र जपुतरा गुरदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूल भवि दलगतरा हम मूल भवि दलगतरा गुरदेव सतगुर पारमा परमेश्वर गुरदेव नान कर करा सलोका आप अगे करा आप करना योग नानके करा और दूसर हो ना हो पौड़ी। ओम साध सतगुर नमस्कार आदि बाद अंदर ओंकार बाबा सुनते आपे आसन बाबा सुनते आपी जसन अपने आप आपे वाया आपे बाप आपी माय आपे सुखम आपे लखन जाय नानक लीला करके बाबा दीन दयाला तेरे संदन की मन होई रवाला रहा उस लोग अंदर ओंकार ओंकार आप नरक सरगुण एक होई कह के खान नानके कहने के पौड़ी। ओ अंकर में की ओ आकार आए कैसे प्रोगन हारा पिंड पदरा गुण विस्तारंग निर्गुण ते सरगुण दृष्टारंग सगल पद कर करे उपाय जन मन मन मन बढ़ाया दो बात आप निरारा नानक अंदर पारा बारा सलोका शही साहब गोपाल सी ससम पिहा रास नान सत सच पाई है तेरे संदन के पास हो बावड़ी ससा सा सा सत सतपुर ते बैना हो सो सतपुर जे पारंग सिम सतगुरु का सुनाज ਅਜੇ ਭਰਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾ ਤੋਂ ਸੋ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਲਹਾਰਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਤਨ ਤਨ ਕਹਾਂ ਪਕਾਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮੋਸਾ ਪੂਰ ਨਾ ਬਿਹੋਨੇ ਨਾਨਕਾ ਹੋਦ ਜਾ ਸਭ ਤੂਰ ਪਾਵੜੀ ਤੱਦਾ ਤੂਰ ਪੁਨੀ ਤੇਰੇ ਜਨਮਾ ਧਨ ਤਿਉ ਜੇ ਰੁਚਿਆ ਮਨੁਆ ਧਨ ਬਚਾ ਸਤਗੁਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅਗਵਾ ਪੀਰ ਸਾਧ ਰਾਜ ਰਾਚਾ ਤੰਦੇ ਕਾਂ ਵਿਆ ਪੈਤਾ ਹੋ ਜੋ ਈਸ਼ਾ ਗਣ ਕਦਨ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦੀ ਪ੍ਰਭਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧ ਗੁਰ ਭਗਵਾਨ ਸਲੋਕਾ ਅਨਕ ਪੇਕ ਅਨਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮਨ ਹਠ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਕੋਏ ਕਾਉ ਨਾ

पिरलियाला जोवन बाला तिसरा बेरंग राती गुड़ शब्द विगासी सौरवासी फल पाया गुणकारी नानक साज मिले वड़ियाई फिर घर सोहे नारी तनासरी शांत महला चौथा घर बहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर ज्यो कृपा करे दा नाम ध्याइए जियो सतगु मिले संभाए सहज गुण गाइए जी गुण गाए बिकसे सदा अंदिन या अब साचे भावी अहंकार हमें तजे मायो सहज नाम समावे आप करता करे सोई आप देहता पाइए हर जो कृपा करे दा नाम ध्याइए जियो अंदर साजा निहो पूरे सतगुरे जियो हों ते से भी दिन रात मैं कदना विसरे जियो कदना बसारी अंदिन सुमारी या नाम लई ता जीम सरवण सुनी ता मन त्रिवते गुरमुख अमृत पीव नजर करे ता सतगुर मेला अंदन बवेक बद विचर अंदर साजा निहो पूरे सतगुर सत संगत मिले वड भाग तहारस आवे जियो अंध रहे लिवलाई ता सहज समावे जियो सहज समावे ता हर मन पावे सदा दीत बरागी हालत पालत सोभा जग अंतर राम नाम लिव लागी हर एक सोग दुहा ते मुगदा जो प्रभ करे सो पावे सत संगत मिले वड भाग तहारा से आवे जियो दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोहया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोहया जियो माया दुख मोहया हा मैं रोया मेरी मेरी करत बिहावी जो प्रभ दे ते चेते नाही अंत गया पछतावे बिन नामे को साध न चल पुत्र कलतर माया तोहया दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोहया जियो कर गिर पालियो मलाए महल हर पाया जियो सदा रहे कर जोड़ ब्राह्मण पाया जियो ब्राह्मण पावे ता हुकुम समावे हुकुम मन सुख पाया हो अंधन जपत रहे दिन राती सहजे नाम ते आयो नामो नाम मिली बड़ियाई नानक नाम मन भावी कर गिर पाले हो मलाए मैल हर पावे जी तनासरी महल पंजवा शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर दीन दयाल जिस संग हर गावीए जियो अमृत हर का नाम साध संग रावीए जियो पज संग साधु इक राधु जन मरण दुख नासे तुर करम लिखिया साज सिखिया कटी जमकी फासे पै परम नाठे छुटी गाठे जम पंथ मूल न आवी बिन बंद नानक धार कृपा सदा हर गुण गावीए ने धरिया तर एक नाम निरंजनो जियो तू दाता दतार सर्व दुख भंजनो जी दुख हरत करता सुख स्वामी सरन साधु आया संसार सागर महा बिखड़ो पल एक मही तरायो पूर रिया सर्व थाई गुर ज्ञान नेत्री अंजन बिन बंद नानक सदा सिमरी सर्व दुख बह भंजनो आप लिए लड़ लाए कृपा धारिया जियो मोह निर्गुण नीच नाद प्रभ अगम पारिया जियो दयाल सदा कृपाल स्वामी नीच थापण हारे आओ जी जंद सबस तेरे सगल तेरी सारे आप करता आप भुगता आप सगल बिचारी आ बिन बंद नानक गुण गाए जीम हर जप जप मन बारी तेरा दर्श पार नाम नाम मोली जियो निध जपे तेरे।

दाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नत जियो, पनिया चादर निका, अनाज मांगो सत्सी काम, गौ पैस मांगो लावेरी, कता जन तुरी चंगेरी, कर की गेहन चंगे, जन तन्ना लेवे मंगी। जैत श्री महला चौथा, घर पहला चौप दे इक्योंकार, सतगुर प्रसाद मेरे हीर रतन नाम हर बसिया, गुर हाथ धरियो मेरे माथा, जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे, गुरु नाम दियो रिन लाथा, मेरे मन भज राम नाम सवेरता, गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, बिन नावे जीवन बिरथा रहो, बिन गुर मूड़ पई है मनमुख, ते माया मोह माया नितफाता, तिन साधु चरण न सेवै कबू, तिन सब जन्म अकथा, जिन साधु चरण साध पग सेवे, तिन सफल्यो जन्म सनाथा, मोको की जय दास दास दासन को, हर दया तार जगन्नाथा, हम अंधले अज्ञान हीन अज्ञानी, क्यों चले मार्ग पंथा, हम अंधले को गुरे अंचल दीजे, जन नानक चले मिलंता। जय श्री महला चौथा, हीरा लाल अमोल कहै पारी, बिन गाहक मीका राखा, रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बिकानो लाखा, मेरे मन गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मिलायो गुर साधु, गुर मिलियो हीर पुराखा रहाओ, मन कोटि अज्ञानी अंधेरा, तिन कर रतन न राखा, ते उजड़ परम मैं मुए गवारी, माया पोए अंग बिख चाखा, हर हर साध मेलो जननी के, हर साधु शरण हम राखा, हर अंगी करो प्रभ स्वामी, हम परे भाग तुम पाखा, जेवा क्या गुण आख बखाने, तुम बड़ अगम बड़ पुरखा, जन नानक हर कृपा तारी, पाखान डूबत हर राखा। जय श्री महला चौथा।

मिल सत संग उमहाराम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लैलाहा। हर हर कृपा धार गुर मिल्यो, गुर मिल्यो हर उमहाराम। कर कीर्त जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गवाहा। मोको धार कृपा मिली है गुरदाते, हर नानक भगत उमां। दैथरी महला चौथा। रस रस नाम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना लैलाहा। खिन खिन भगत करे दिन राती, गुरमत भगत उमहाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा। गुरमत पंच दूत बसया वै, मन तन हर उमहाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाय सदा लैलाहा। दीन दयाल कृपा।

स्वर्ण पंडित कर्माकारी जित कर्म सुखी उपजय पाई सो आत्म तत् बिचारी रहाओ। शास्त्र वेद बकै खड़ो पाई कर्म करो संसारी पाखंड मैल ना चुकई पाई अंतर मैल विकारी इन भेद डूबी माकुरी पाई उंडी सिर कै पारी दुर्मत कणी बिगुती पाई दूजे पाए खुआई बिन सतगुर नाम न पाये पाई बिन नामे परम न जाई सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई आवन जान रहाई साच सहज गुरते उपजय पाई मन निर्मल साच समाई गुर सेवे सो बूझै पाई गुर बिन मग न पाई जिसे अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई कूड़ बोल बिख खाई पंडित दही विलोये पाई विचों निकले तथ जल मथिए जल देखिए पाई ए जग ए हावथ

बिन गुर गांठ न छूटे भाई, थाके कर्म कमाए। एह जग परम पुलाया भाई, कहना किछु ना जाए। गुर मिले पौ मन वसै भाई, पै मरना सच लेख। मज्जन दान चंगियाइया भाई, दरगा नाम विशेख। गोरे अंकश जिन नाम दृढ़ाया भाई,

अनक विधि समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा

सिमर सिमर नानक भय निहाल। श्लोक उस्तत करे अनेक जन अंत न पार हवार। नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार विहारी। कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट वन प्रमे उदासी। कई कोट भेद के स्रोते कई कोट तपी सर होते। कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कव काव विचार है। कई कोट नव तन नाम से आवै नानक करते का अंत न पावै। कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी। कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेगा आत्म निकोर। कई कोट पर दर्व कोहिर है कई कोट पर दुख न कर है। कई कोट माया श्रम माए कई कोट पर दे पर माए। जित तित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिरजती जोगी कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर बिरख निपजाए। कई कोट पवन पानी बेसंतर कई कोट देश भूमंडल। कई कोट ससिर सूर निखतर कई कोट देव दान इंद्र सिर छतर। सगल समगरी अपने सूह तारे नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे। कई कोट राज तामन साधक कई कोट वेद प्राण सिमरत हर शास्त्र। कई कोट किए रत्न समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे। कई कोट जग किन्नर प्रसाद कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाज। सब ते नेरे सब हूं ते दूर नानक आप लिप्त रहा भरपूर। कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुरग निवासी। कई कोट जन्मे जीवे मरे कई कोट बहुजोनी फिरे। कई कोट बैठ ही खाए कई कोट काले थक पाए। कई कोट किए धनवंत कई कोट माया में चिंत। जय जय भाणा तै तै राख नानक सब कृपा के हाथ है। कई कोट भय बैरागी राम नाम संगति निवलागी। कई कोट प्रभ खो गो जंते आत्म में परब्रह्म लहंते। कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलियो प्रभ अविनाश। कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक दे जन सदा धन धन। कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड। कई कोट होए अवतार कई युद्ध कीनो विस्तार। कई बार पसरे उपासार सदा सदा एक एक अंकार। कई कोट कीने बहुपात प्रभ ते वह प्रभ महे सुमाद। ताका अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रभ सोए। कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास। कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेतरे। कई कोट नाम रस पीवे अमर पहे सदी जीवे। कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सहज समावे। अपने जन को

विचार करते कि मित न जाने किया नानक जुत पाए सोबरतिया बिस्मन बिस्म पय समाद जन पूजा थै स्वाद प्रभ के रंग राचन रहे गुर के बचन पदार्थ रहे ओए दाते दुखा टंडहार जाके संग तरे संसार जन का सेव सोट पागी जन के संगे कल विलाकी गुण को पिंद कीर्तन जन का पै गुर प्रसाद नान फल पाए सलोक आदि सच जुगार सच है पे सच नानक होसी पे सच आठ पदे चरण सत सत प्रसन हार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखन हार नाम सत सत अवन हार आप सत सत सतारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रवक्ता सुरत सत सत जसवंता बुजनहार को सस होए नानक सत सत प्रस होए सत स्वरूप जनमानिया करण कराव तिन मूल पछाने जाके हृदय विश्वास प्रा तत् ज्ञान तिसमन प्रटाया भय ते निरपो होए बसाना जिस ते उपजया तिसमाय समाना बस तमाय दे पास कढाई ताको पिना कहना जाई बुझै बुजनहार विवेक नारायण मेरे नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेव सदा पुजारी ठाकुर के सेवक मन प्रतीत ठाकुर के सेवक निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम के रंग सेवको प्रपालन हारा सेवकी राखे निरंकार सो सेवक जिसते अप्रतारे नानक सो सेव सा सुमारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेव के सर पर राखे

दर्शन देख सब मोहि, आप सत की असब सत, तिस प्रभते सगली युद्ध पत, तिस पावे ता करे विस्तार, तिस पावे ता एक अंकार, अनक कला लखे नहीं जाए, जिस पावे से लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप भरपूर, अंतरगा जिस आप जनाए, नानक देह जन आप बुझाए, सर्व भूत आप वरतारा, सर्व नयन आपे खनहारा, सगल समगरी जाका तना, आपन जस आप ही सुना, आपन जानिए खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया, सबके मद अलिप्त हो रहे, जो कुछ कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लहे समाए, इसते होए सो नाही बुरा, उरे कहो किने कश करा, आप भला कर तू तद नीकी, आपे जाने अपने जी की, आप साज तारी सब साज, ओत पोत आपन संग राज, ताकि गदमित कही न जाए, दूसर होए तो सोझी पाए, इसका किया सब परमान, गुर प्रसाद नानक हो जान, जो जाने ते सदा सुख होए, आ मिलाए लय प्रभ सोए, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत, तन तन तन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का ए सुहाओ, जन के संगचित आवे नाओ, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा न

सुन मीता हूं तेरी शरण आई आया, प्रभ मिलो देह उपदेशा। मान ना की जय शरण परी जय, करे सुपला मनाइए। सुन मीता जियो पिंड सब ताने अर्पी जय, इहो दर्शन हर जीव पाइए। भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै, हर नामा है मीठा। जन नानक कहो गुर कृपा धारी, सब अकुल निरंजन डीठा। भयो अनुग्रह प्रसाद संतन कै, हर नामा है मीठा। जन नानक कहो गुर कृपा तारे, सब अकुल निरंजन डीठा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कारयोग सतसंगी जनों मिटभागे, सेवक परिवार भाई मनप्रीत सिंह बाठ परिवार वालों परिवार की चढ़दी कला नूं मुख रखदिआं श्री सुखमणि साहब जी के पाठ आरंभ करवाए गए सन। निर्विघ्नता सहित समाप्ति उपरंत पावन हजूरी अंदर गुरबाणी शब्द कीर्तन ढाडी वारा इतिहास तो उपरंत आप संगत ने अरदास बेनती में शमूलियत की है। इस मौके ते सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगत ने श्रवण किए हैं। गुरद्वारा साहब विखे नवे स्थान का नींह पत्थर 20 सितंबर दिन एतवार दोपहर 12 बजे रखा जाएगा, जिस संबंध में भाई लखविंदर सिंह जी 15 तरीक तो लैके 23 तरीक तक रोजाना ही शाम के दीवाना आप संगत को गुरबाणी शब्द कीर्तन श्रवण करवाएंगे। 20 सितंबर दिन एतवार को सत्कारयोग भाई गुरचरण सिंह जी दरबार साहब के अरदासी अरदास बेनती करके नवे अस्थान का टक ला के नींह पत्थर रखेंगे। सो आप समूह संगतों को बेनती है आप जी ने दर्शन देने की कृपालता करनी जी। अमृत संचार भलके सवेरे 9:30 बजे होंगे, जिन्हां संगतों ने खंडे बाटे की पौल छकनी हो तैयार होकर 9 बजे पहुँचने की कृपालता करन जी। गुरबाणी संथिया क्लास हर हफ्ते सोमवार तो वीरवार शाम 7 से 8 बजे तक लगती है, जिन्हां ने अटेंड करनी हो अपना नाम तो फोन नंबर बार डेस्क उत्ते लिखाने की कृपालता करन जी। परिवार वालों बाट परिवार वालों आई हुई समूह संगत का तह दिल तो धन्यवाद है, जिन्होंने परिवार के सदे पत्र से पहुँच के परिवार का माण वधाया है। आईया हुई समूह संगत वास्ते परिवार वालों गुरु के लंगर तैयार करवाए गए हैं, आप संगत ने कड़ा प्रसाद की देख लिया के गुरु के लंगर विचों प्रशादा छक के जाने की कृपालता करनी जी। गुरद्वारा साहब विखे नगर जनेतपुरा ते भाई सुखचैन सिंह परिवार वालों 2 श्री अखंड पाठ साहब आरंभ ने, जो हाल नंबर 2 ते 3 आरंभ ने, जिन्हां दे भोग भड़के सवेरे 9:30 बजे पैणगे, उपरंत दीवान सजणगे। परिवारों वालों बेनती आप जी ने दर्शन देने की कृपालता करनी जी। इन्हां ही शब्दों के नाल इस दीवान हाल विचों विशेष दीवान की समाप्ति है और आप संगतां ने गुरु के लंगर विचों प्रशादा छक के जाने की कृपालता करनी जी। भुला चुकां दी खिमा, आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पार। कह कबीर तुम सिमरत दाते चाप दाते तनबा बिलावल, डंडा मुद्रा खिंता दारी प्रमके पाए पवे पिखतारी। आसन पवन दूर कर बपरे, छोड़ कवट नित हर हर नित हर पज बवरे रहाव। जो तू जाचे सो ते अपन फोगी, कह कबीर कैसे जग जो की बिलावल। इन माया जगदी खुसाए तुमरे चन बसारे, किंचत प्रीत नवजे जन को जन कहा कवरे बिचारे रहाव। त्रिग तन त्रिग तन त्रिग त्रिगे माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फनी। इन माया को दृढ़का राखो बंदे आप बचनी। क्या खेती क्या लेफा देवी प्रपंच झूठ गुमाना, कह कबीर ते अंत भगूते आया कारण ताना पिलाबल। सरी सरोवर विचारे आछे कम अनूप, परम ज्योत परखोत्म जाके रेख न रूप। रे मन हर पज प्रमत जो जग जी प्रणाम रहाव। आवत कछु न दिसई न दिसे जात, जे उपजै बिनसत हित जैसे

प्रबल जन मरण का प्रम किया गोविंद राखी जीव सुन समानिया गुरसाखी जागे रहा कांछी ते तुन उपजै तुन कासी जाई कांसी फूटी पंडित तुन तुन कां समाई त्रै फूटी संध्या मैं पेखिया घट ही घट जागी ऐसी बुद्ध।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सफल मुख गुर दीना दुख विसार सुख अंतर दीना ज्ञान अंजन मुख गुर दीना राम नाम फिन चीफन मन महीना नाम दियो सिमण कर जाना जग चीपन स्यों जियो समाना बिलावल बाणी भगत बाणी रविदास भगत जी के एक ओंकार सतगुर प्रसाद दरिद्र दुख देख सबको सह सिद्ध सह मारी अष्ट दशा सिद्ध करत रे सब कृपा तुम्हारी तू जानत मैं किस नहीं पाव खंडन राम शरण सगर जी शरणागति प्रभ पूर्ण काम रहा जो तेरी शरणागता तिन नाई पार ऊच नीच तुम ते तरे आर संसार कह कबीर कह रविदास कथ करा वो कह करीजै जैसा तू तैसा तू ही क्या पांदी जय बिलावल जे कुल साध वैष्णव होए वर्ण अपर्ण।

लोए जन पिया सार रस तजय आन रस होए रस मखन डार के डारे बिख खोए पंडित सूर शत्रपत राजा पत प्रभ यो न कोए जैसे पुराण पात रहे जर समीप पनरदास जन्मे जा कोए

करता आवत करता जात भी करता निर्गुण करता सरगुण हर सरगुण करता गुर प्रसाद नानक समदृष्टा गुण महला पंजवां वाक्यो मीन कपकी न्याय तू उर्ज रहो कुसंबाई दे भगतारे सास लेखे लव तो उदरे हार कुण गाय दे मन सम छोट अबाई ले अपने रहन को ठौ न पावे काय पर के जाय रहाव जो मैगल इंद्री रस परियो तू लाग परियो कुटुंबाई ले ज्यों पंखी एकत्र होए फिर बिछरे थिर संगत हार हर त्याई ले जैसे मीन बसन साध बिनस्यो ओम।

मूर्ख भगवान गुर की शरण रहो कर जोर गुरु बिना मै नाई होर गुर बोध तारे पवार गुर सेवा जमते छुटकार अंधकार में गुर मंत्र उजारा गुर के संग सगन तारा गुर पूरा पये बटपाके गुर की सेवा दुख न लागे गुर का साधन बेटे कोय गुर नानक नानक हर सोए गौण महला पंजवा राम राम संग कर पिहार राम नाम राम प्राणदार राम राम राम कीर्तन गाय रमत राम सर्यो समाय संत जना मिल बोलो राम सब ते निवर पूर्ण काम रहा राम राम तन सं भंडार राम राम कर आहार राम राम विसर नहीं जाए कर कृपा गुर दिया बधाई राम राम राम सदा साए राम राम राम लुलाए राम राम जप निवर पाए जन जन्म के कर बख गए रमत राम जन मरण पारे उचरत राम पे पार उतारे सबते उच राम प्रगास निसबासर जप नानकता गौण महला पंजवा उनको खासमा कीनो ठाकर दास सगल दास संग ते मापतारे गोबिंद भगत का मैन पाया राम चना मेर मंगल गाया सगल सेठ के पंच सरदार राम भगत के पानी हारहा भग जगत पास ते लेते दान गोबिंद भगत को करे सलाम लूट ले सात पर खोपे साजना पग मरम धोपे पंच भूत जने एक माए उत्पज खेल कर जगत व्याय तीन गुणा कह संग रच बसै इन को छोड़े उपर जन बसे कर कृपा जन लीले जन लिए छाए जिसके से तिन रखे हटाए को नान भगत प्रसार बिन भक्ति सब होए खुआर कौन महला पनमा काल कलेश मिटिया नाय दुख बिनसे सुख कीनोटा जप जप अमृत नाम काय संत प्रसाद सगल फल पाए राम रमत जन पार परे जन जन के पा फरे राम गुर के चंड देव तारे अखन सागर ते उतरे पारे जन मरण सब मिट्टी उपाद प्रसो लागे सह समार तांत नांतरे कैसामी सरकटाके अंतर जामी कर कृपा जाको मत दे आठ पैर प्रभ का नाम ले जाके अंतर वसे प्रयाप ताके हृदय होए प्रकाश भक्त पाए हर कीर्तन करिए जप पार ब्रह्म नानक निस्तरिय गौंड महला पन्मा गुर के बचन गुर के चरण कम नमस्कार काम क्रोध स्तंते मार होए रहे सगल की रीना घट घट रमैया सब मैं चीना इन बिदर मोर गोपाल गोपिंद तन तन प्रभ का प्रभ के जिंद राव आठ पैर हर के कुन का जीव प्राण का स्वाव तज पान जान प्रभ संग सार प्रसाद हर स्यो मन रंग जंतु किया तिसको जान आके दर के पावे मान मान तन मिर होए निहार ना दर्शन नानक जब तुगपाल कर कृपा मेरे दीन दयाला साध की मंगन कृपाला हो दयाल देवो प्रवतान नानक जप जीवे प्रभ नाम कौन महला पंजवा धूप दीप गोपाल गोपाल धूप दीप सेवा गोपाल अनख बार बंधन करतार प्रभ की सन गई प्रभ त्याग गुर सुप्रसन्न पय बटपाग आठ पैर गई कुपिंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद रहा हर गुण रमत पय आनंद पाप ब्रह्म पूर्ण बख्शंद कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मिटा कर्म धर्म एहो तत् ज्ञान साध संजपी हर तार सागर तर बोत प्रभ चरण अंतर जामी प्रभ कारण करण राख ली अपनी कृपा तारे

महाविचार नानक बाह श्री प्रव्याप सुदासता एको हर जाप गौण महला पनमा हर हर नाम जपो मेरे मीत निमन होए तुम्हारा चीत मन तन के सब मिटे बुलाए दुख अंधेरा सगला जाए हर गुण गावत जप तरिए संसार वड भागी पाए पुरख पारा जो जन करे कीर्तन गोपाल तिस को पोए न सके जमकाल जक में आसो प्रपान गुरमुखे अपना खस पछाण हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटे उन्माद काम क्रोध मिटे उन्माद सदा चूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत हर तन खाट के भंडार मिर सतगुर सब का सवार हर के नाम रंग संग जाका हर चरणी नानक मन्ना का कौन महला पनमा पव सागर भूत हर चरण सिमरत नाम नाही फिर मरण हर गुण रमत नाही जम पंत महापद महा विचार पंच दूत ब्रह्मांड तो सुनाई पूर्णनाथ जी जनता अपने को दी जय हाथ राम सिमर सात बे प्राण पार ब्रह्म का कृपख्या जो की जति वैसव रामदास मित नाही ब्रह्म नास कर्ण पलाह करे सेवा देप तरने पूजे लख भेव भिम पद देस आप दे जाग में बदले के मोहे निरकुण

भगवंत संगत कै मुख उचल पए सगर थान निंदक गए सास सास जन सदा सदाई पा परम गुर बि प्रवाय सगल पै मिटे जाकी शरण निंदक मार पाए सब धरण जन की निंदा करे न कोई जो करे सो दुखिया होए आठ पैर जनिक त्याय जमुआ ताके निकट न जाए जनर पैर निंदक अंकारी जन पल माने निंदक विकारी निंदक सिर निंदक सिख सतगुर त्याया जन उपरे निंदक नरक पाया सुन साजन मत मीत प्यारे सत बचन वरते हर द्वारे जैसा करे सो तैसा पाए अपमान के जाड़ सर पर जाए नी धरिया सतगुर ता तेरी कर कृपा राखो जन केरी

ताज गए त्रिन पाप समेर, जब जब नाम पूजे प्रभ पैर, नंद रूप प्रगट्यो सब थान, प्रेम भगत जोरी सुखमान, सागर तरियो बाछर खोज, खेद न पायो ना फन चोज, सिद्ध समायो कुटके माए, करन हार को किश चर्ज नाए, जो छूटो तो जाए प्याल, जो काढ़ो तो नदर निहाल, पाप फोन हमरे वस नाए, रसक रसक नानक गुण गाए, राम कली महला पंजवा, ना तन तेरा ना मन तोए, माया मोह व्याप्या तोए, कुदम करेगा डरच्यों छेल, चिंत जाल काल चक्र पेल, हर चरण कमल सरनाई मना, राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावे साजत ना राहो, उन्ने काज न होवत पूरे, काम क्रोध मसदि चूरे, करे बिकार जीरे के ताई, गापल संग न तसुआ जाई, धरत तोया नेक चल जाने, कौडी कौडी को खाक सिर जाने, जिंदिया तिस्ता चेते मूल, मिथ्या लोभ न उतरे मूसूल, पार ब्रह्म जा पै दयाल, ए मनुआ हुआ सदार वाल, हस्त कमल लल लीनो लाए, नानक साचे सास समाए, राम कली महला पंजवा, राजा राम की शरण आए, निरपो पै गोबिंद गुण गावत, साध संग दुख जाए राहो, जाके राम बसे मन माई, सोजन दुतर भेख तनाई, सगले काज सवारे अपने, हर नाम रसन नित जपने, जिसके मस्तक हाथ गुर तरे, सोदास अंदेसा काहे करे, जन मरन की चूकी कान, पूरे गुर ऊपर कुरबान, गुर परमेसर भेट निहाल, सो दर्शन पाए जस होए दयाल, पार ब्रह्म जिस कृपा करे, सा संग जो पव जल तरे, अमृत पीवो साध प्यारे, मुख उजल साचे दरबारे, अंध करे रज सगल विकार, नानक हर जप उतरे पार, राम कली महला पंजवा, ये तन ते बिसंतर भागे, माटी को जल दे दिस त्यागे, उपर चरण तले आकाश, कट मैं सिद्ध क्यों प्रगास, ऐसा सम्राट हर जीव आप, निमक न बिसरे जी भगतन के, आठ पैर मन ता को जाप रहाओ, प्रथमे माखन पाछे दूध, मैल कीनो साबन सूद, पैते निरपो डरता फिरे, होंदी को अनहोंदी हिरे, देही गुप्त बदेही दिसे, सगले साज कर जगदीसे, ठगन हारन ठगदा ठागे, बिन वखर फिर उठ लागे, संत सभा मिल करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद प्राण, ब्रह्म विचार बिचारे कोए, नानक ताकी परम गत होए, राम कली महला पंजवा, ज्योतिष पावे सोतिया, सदा सदा हर की सरनाए, प्राभ्य नाई अन बिया रहाओ, पुत कलत्तर लक्ष्मी दिसे, इन मैं किछु न संग लिया, बिखेट गौरी खाए पलाना, माया मंदर त्याग गया, निंदा कर कर बहुत बगुत्ता, गर्भ जोन में किरत पिया, पुरब कमाने छोड़े नाई, जमदूत ग्रस्यो मां पिया, बोले झूठ कमावे अवरा, तृष्ण बूझे बहुत हया, असाध रोग जया, उपजया संत दुख ने रे बनासी मां खया, जिन्हें नवाजे तिन ही साजी, आपे कीने संत जिया, नानक दास कंठ लै राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया, राम कली महला पंजवा, ऐसा प्रभु ऐसा पूरा गुरदेव सुहाई, जाके सिमरन बिरथा जाई राओ, दर्शन भेख तोए न्याल, जाकी तूर काटे जमकाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार सवारे सगले तन के, जाके मस्तक राखे हाथ, प्रा मेरे नाथ को नाथ, पत त्योदारन कृपा निदान, सदा सदा जाइए कुर्बान, निर्मल मंत दे जिसदान, तजे विकार बिन से अभिमान, एक त्यागे साध के संग, पाप बिनासे नाम के रंग, गुर परमेसर सगल निवास, कट कट रवरे आगुंतास, दर्स दियो तारो प्रभ्यास, नित नानक चितवे सच अरदास, राम राग राम कली महला पंजवा, कर दूजा दो पदे ओंकार सतगुर प्रसाद, गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम परम सुख पाइये, आवा गौन मिटे मेरे मीत रहाओ, गुण गावत होवत परगास, चरण कमल मैं होए निवास, सत संगत मैं होए उदार, नानक पव जल उतरस पार, राम कली महला पंजवा, गुर पूरा मेरा गुर पूरा, राम नाम जप सदा सुहेले, सगल बनासे रोग कूरा राओ, एक रादो सच्चा सोए, जांकी सरन सदा सुखोए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत

0: सुगव कार बिखड़े जपत नाम उदारनो सब जी तेरे प्रभ मेरे कर कृपा सब रहन थी मां बिनवंत नानक प्रभ मया कीजे नाम तेरा जप जी मां राख लिए प्रभ भक्त जन अपनी चरनी लाए राम आठ पैर अपना प्रभ सिमरो एको नाम त्याए राम त्याए ते प्रभत परे पवजल ते आमन जाना सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रभ लगा मिठा पाना सबेच पुन्नी आस पूरी मिले सतगुर पूरिया बिनवंत नानक प्रभ आप मिले फिर नाही दुख विसारिया राम कली महला पंजवा छंत श्लोक चरण कमल शरनागति आनंद मंगल गुण गाम नानक प्रभ आराधिये बिपत सिमरिये जल थल मैयल सोए जियो जल थल मैयल पूर रिया एक निमख मनो न विसरे गुर चरण लागे दिन सुभागे सर्व गुण जगदीसरे कर सेव सेवक दिन सरणी तिस भावे सोए जियो बल जाए नानक सुखदाते प्रकाश मंथन होए जियो श्लोक हर सिमरत मंथन सुखी बिनसे द्वितीया सोच नानक टेक गोपाल की गोविंद संकट मोच संत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो हर गुण आनंद गाए प्रभ दीना नाथ प्रितपाल जियो प्रितपाल चित पुरख एको तिसे सो रंग लागा करन चरण मस्तक मेल लीनो सदा अंदन जागा जियो पिंड ग्रह तान तिसका तन जोबन तन माल जियो सदा साध सदा बल जाए नानक सर्ब जिया प्रितपाल जियो श्लोक
1: श्लोक शांत सो स्वामी प्रभ राखो अंचल तां कै लाग जियो भज साधु संग दयाल देव मन की त्याग जियो देव मन की त्याग जियो एक ओट कीजे जियो दीजे आस एक धरणी धरे साध संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे जन्म मरण विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो बल जाए नानक पुरख पूर्ण थिर ताका सोहाग जियो श्लोक धर्म अर्थ और काम मोख मुक्त पदार्थ नाथ सगल मनोरथ पूरिया नानक लिखिया मात शांत सगल ऐश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो आनंद पिया बड़भागियो ग्रह प्रगटे प्रभ आए जियो ग्रह लाल आए पुरब कुमाए ता कि उपमा क्या गणा बेअंत पूर्ण सुख सहज दाता कवन रसना गुण पणा आपे मिलाए गए कंठ लाए तिस बिना ना ही जाए जियो बल जाए नानक सदा करते सब में रिया समाए जियो राग राम कली महला पंजवां रौन झुनड़ा गाओ सखी हर एक त्यावो सतगुर तुम सेव सखी मन चिंदेड़ा फल पावो रामकली महला पांचवा रुति श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद कर बंधन प्रभ पार ब्रह्म पौछो साधो तूर आप निवार हर हर भजो नानक प्रभ भरपूर कलब काटन पै हरण सुख सागर हर राय दीन दयाल दुख भंजनो नानक नीत त्याए शांत जस गावो बड़भाग्यो कर कृपा भगवंत जियो रोती मां मूर्त कड़ी गुण उचरत शोभा वंत जियो गुण रंग राते धन ते जिनी जन जिनी एक मन ते आया सफल जन्म प्या तैनका जिनी सो प्रभु पाया पुन दान न तुल किरिया हर सर्व पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा सिमर मरण पर हंत जियो श्लोक उद्यम अगोचर उगम उद्यम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सत उद भाव सी नानक नाम आधार संत शरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरिया थिया नानक जप भगवंत शांत रुत सरस बसंत माह चेत बैसाख सुख मास जियो ना मिलिया मोलिया मन तन सास जियो कर नाहो नह चल आनंद सखिए चरण कमल पर फुलिया सुंदर सुजान सुजान बेता गुर गोविंद उमलिया बड़ भाग